तो गटगटे अंतर सर्व निरंतर जी हर एक पुरख समान एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज बिडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तद विनय अवर न जान तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेवै तुद जी जन नानक दिन कुरबान हर त्यावै तुद जी से जन युग मैं सुखवासी से मुक्त पै जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निरभौ त्याया जी तिनका पौ सब गुआसी।

कहो सरम। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। पातशाह दसवीं चौपाई पुनरा ससगा गाटा सीसा श्री अस के जगत के ईसा पहपन वृष्ट गगन दे पई सब न्यान बधाई दई। धन धन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा खल पवन के सृजन हारे दास जान मुहि लिहो उवारे कवि उवाच बेनती चौपाई। अमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा।

जब या करख करतो कबो तुम्हें मिलत दे तरसवो जेते बदन सिर सब तार आपे अपनी बोझ उचार तुम सब ईते रह नरालम जानत भेद भेद अरयालम निरंका निर्विकार निर्लंब आदि अनिल अनादि असंभ ताका मूढ़ चार तपेता जाको पेब न बाब तवेता तांको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पिवा पे अपनी बुद है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो तेती।

जिस मरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु की साजन वाजी सात संगत जी आप जी ने सौदा रहरा साहबाणी के जाप सरवण किए हैं। आओ हुण हजूरी रागी भाई बलविंदर सिंह जी समूह जथे पासों कीर्तन सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।

हाय मेघ बना जो केतु जाय गोवत भजन बे नाम व्रत सब काम जो कृपन के नरार्थ धाम तान तान ती जान जिह काट बस्यो हर नाम नानु तक बर बर जाओ रह त्योर का शौर कुमावत मान पीत मुख हूँ गण लावत जन नार प्रभु पर बीन बाहर पीख न काहू पीन नवर उपदेश आप न करे आवत जाओ जन्मा मर जिसके अंतर बस निरंकार किसी तारा संसार जो तुम पहने तिन प्रभु जाता नान कुन जन चन प्राता करु बीन पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आप है माने आप है आप आप करत नीरा कह दूर जन आवत कह बुझावत नीरा उपाव श्याम सकल ते रह तो सब का जाने आत्म की रह तो जह पावत हलई लड़ लाए धान धनांतर रहिया समय सो सेवक जह कृपा करी निमुख निमुख जब नान करी श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजय एव नानु प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरु दिवस पति जह प्रसाद क्षति अमृत काहे तो ठाकुर को रख मन माह जय प्रसाद सुगंध तो तन लावे हिंदु सिमरत परम गद पावे जय प्रसाद बस सुखमंदर तिसह दियाय सदा मनंदर जय प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरत सरसना जय प्रसाद रंग राह पोग नाम सदा दियाय ध्यान जोग जय प्रसाद पाठ कुटुंबर हंडावे तुसह दिया कतवल पावे जय प्रसाद सुख।

निज प्रसाद सुंदर रूप सब सुप्रभ सिमरह सदानुज प्रसाद तिर निकिजात सुप्रभ सिमरह सदन राज प्रसाद तिर पाद रह गुरु प्रसाद अनुजास कह ज प्रसाद सुनह कर्ण नाद ज प्रसाद बिख विस्माद निज प्रसाद बोर अमृत रसन राज प्रसाद सुख सहज वसन ज प्रसाद हस्त कर चरह ज प्रसाद संपूर्ण भरा ज प्रसाद परम गत पाव ज प्रसाद सुख सहज सुमाव है सप्रभ त्याग कतलाग गुरु प्रसाद अनुमन जाग जय प्रसाद तुम प्रगट संसार प्रभु कहो मूर न मन हम सार जय प्रसाद तेरा प्रताप मन मूढ़ तू ताको जब जय प्रसाद तेरे कार्य

हर गुण गाओ प्रभु कृपा दुहे प्रगाह प्रभु दया तुम प्रगा प्रभु सुप्रसान बासा मानस हो प्रभु दया तुम तू तुम हो सर्व निधान प्रभु तेरी माया या बहु कछु न कन्हु रया जेत जेत राव बहु तेत लग हसनाथ नानक निकाय कछु न हस लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोय जो जो कह सुमत सुनवीत नानक बिनवंता साध जनक अचरज कथा अष्टपति साध के संग मुख उजल होत सत्संग सगली को साध के संग मिटाय मन सभंग प्रगट सुज्ञान साध के संग बुझ है प्रभु निरा सत्संग सबोधन बीरा साध संग पाय नाम रत्न साध के संग एक ऊपर जन साध की महिमा वर्ण कौन प्राण नानक साध सुबह प्रमा समानी साधु के संगा गोचर मिल साधु संग सदा पर फुल साधु के संगा वह वह पंचा साधु संग अमृत रह पुंजा साधु संग सब गिरी साधु के संग मनोहर बहन साधु के संग न कदम ताव साधु संग सतमन पावे साधु के संग माया दिपिन साधु संग नान प्राव सो प्रसाद साधु संग दुश्मन समीत साधु के संग महपनीत साधु संग के सस्यो नहीं बैर साधु संग न बीगा पैर साधु के संग नाह कुमंद साधु संग जन परमानंद साधु नाह हताप साधु तज सव्याप अपजन साधु बुढ़ाई नान साधु प्रभु बनाय साधु संग न कबूताव साधु संग सदा सुख पाव साधु संग व्यस्त अगोचर साधु संग आजार साधु के संग बसाधान ऊच साधु के संग महल पाहूच साधु संग दृढ़ सब धर्म साधु संग केवल पार ब्रह्म साधु के संग पै नाम निधान साधु के कुरबान साधु के संग सब पूरे अधार साधु संग साजन वीर कुटाम्ब निहतार साधु के संग सोत अनुपाव जय सको रसाव साधु संग तरम राय करे सिवा साधु के संग सुबह सुर दिवा साधु के संग पाव पुराय साध संग अमृत गुण गायन साधु संग सर्व थान गमनान साधु संग सबल जनाम साधु संग नहीं कश काल दर्शन पीड़ धोत निहाल साधु के संग कलु सत हर साधु के संग नरक पर हर साधु के संग ईह ऊह सुहिला साधु संग विशरद हर मेरा जो इच्छा है सोई फल पाव साधु के संग नृथ जा पार ब्रह्म साधु रुद बस नानक उद्रय साधु सुन रस साधु संग सुन हर नाव साधु संग अर्क गुण गाऊ साधु संग नम दिवसर साधु संग सारु पार निस्तार साधु संग लगा भ्रमित साधु संग कटकाठ साध संग पयाग कर साध संगत पई हमारी साध के संग बेटे साहब रूप नाम साध बेटे संजो साध की महिमा वेदना जान जेता सुन है तेता बखियान साध की उपमा ते हो गुण ते दूर साध की उपमा रही पार पूर साधु सुभा का ना ही अंत साधु सुभा सदा भी अंत साधु सुभा उच ते उच साधु सुभा मुच ते मुच साधु सुभा साध बने आई नान साध प्राप्त वेदना पाई सुलोक मरण साचा मुख साचा सुयवना पीखे बिन कोई नानक ही लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो पति ब्रह्म ज्ञानी सदा नलीप जह जाल मह कमरली ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जह सूर सर्व कव सो ब्रह्म ज्ञान का दृष्ट सुमान जह राज रंक कवलागत रूपवान ब्रह्म ज्ञानी का तीरज एक ज्यो वसुदा को खुदय को चंद्रे ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाव नानक ज्यो पाव का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैण लाग जला ब्रह्म ज्ञान का मन हो प्रकाश जह तरु परावकाश ब्रह्म ज्ञानी का मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञान का है अभिमान ब्रह्म ज्ञान बुझते ऊंचा मन अपने है शब्द नीचे ब्रह्म ज्ञान से जन पाए नानक जन प्रभाव करी ब्रह्म ज्ञान शब्द गिरी नया तुम रह ब्रह्म ज्ञान चींदा ब्रह्म ज्ञान की सब ब्रह्म आया ब्रह्म ज्ञान काश बुरा न पाया ब्रह्म ज्ञान सदा सौंदर श्री ब्रह्म ज्ञान की दृष्ट अमृत बर श्री ब्रह्म ज्ञान बंधन तिमुक्ता ब्रह्म ज्ञान का नमल जुगता ब्रह्म ज्ञान का भोजन ज्ञान अन ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञान एक उपरा ब्रह्म ज्ञान का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञान पर उपकार माह ब्रह्म ज्ञान का नाह तंदा ब्रह्म ज्ञान रिता तो बंध है ब्रह्म ज्ञान का हुए सुपरा ब्रह्म ज्ञान सुफल उफला ब्रह्म ज्ञान संग सगल उदाहरण ब्रह्म ज्ञान जा पाय सगल संसार ब्रह्म ज्ञान का एक रंग ब्रह्म ज्ञान का बसा प्रभ संग ब्रह्म ज्ञान का नाम आधार ब्रह्म ज्ञान का नाम परवार ब्रह्म ज्ञान सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञान अहम बुद्ध त्याग ब्रह्म ज्ञान का मन परमानंद ब्रह्म ज्ञान का कार्य सदानंद ब्रह्म ज्ञान सुख सहन वाहनंद ब्रह्म ज्ञान का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञान एक संहिता ब्रह्म ज्ञान का हुआ चिंत ब्रह्म ज्ञान का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञान जिसकारा प्रभा ब्रह्म ज्ञान का बड़ प्रता ब्रह्म ज्ञान का दर्श बड़ भागी पाई ब्रह्म ज्ञान को बार बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी का जय महेश्वर नान ब्रह्म ज्ञान आ परमेश्वर ब्रह्म ज्ञान की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञान का सकल मान माही ब्रह्म ज्ञान का कौन जाना पियत ब्रह्म ज्ञान को सदा आदिश ब्रह्म ज्ञान का कथिया न जय आदा खियर ब्रह्म ज्ञान सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञान की मृत कौन बुखान है ब्रह्म ज्ञान की गद ब्रह्म ज्ञान जाना ब्रह्म ज्ञान का अंदना पार नान ब्रह्म ज्ञान कहो सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञान सब श्रेष्ठ का कर्ता ब्रह्म ज्ञान साध जीवन मरता ब्रह्म ज्ञान मुक्त जुगत जी कथा ब्रह्म ज्ञान पूर्ण पुरख

श्लोक उर तारा जो अंतर्नाम सरमय पीख पगवा निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक हुआ पर सगल निस्तारस्पति मिथ्या नाहि रसन परस मन प्रीत निरंजन दर्श पर त्रिय रूप न पीख नेत्र साधु टहल संत संहित करण ना सुना काहु निंदा शब्द जाने आवस कमंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हर मन की बहन मानती टर इंद्रिय जेत पंच दोह ते रहत नानक कूड़ मध्य को ऐसा परस वैसनो सो जह परसो प्रसन्न विष्णु माया तुह भिन्न कर्म कर तो वह निह कर्म दह वैसनो का निर्मल धर्म

संगत पावे। भगवत भगवंत भगत करंग सकल त्याग दुष्ट का संग मान तिव्य बिनसा सकल परम कर पूजा सकल पार ब्रह्म सा संग पापा मार को वेद भगवत की मात उत्तम हो भगवान की टहल कर नियत नियत मान तन रूप विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय बसावे। नानक है भगवती भगवंत का पावे सुपंडित जो मन प्रभु राम नवादम सुध राम नव सार रह पीवा सुपंडित का उपदेश जाग जीव हर कथा हृदय बसावे सुपंडित फिर जो नाद वेद प्राण समृद पूजा मुगल सुख मह जान स्थूल चह वरना को दे उपदेश। नानक सुपंडित का सदा दिय सब बीज मंत्र सर्व ज्ञान चह वरना।

मंगल गुण का काहू जुगत कहता ना पाया धर्म नानक मिलाय जिस लिखा दुर्गन जिसका मन पार ब्रह्म कर्म दुखन सात रामदास आत्म राम दहन दुर्गा दात संतन पाई तिन पाय सदा निकट निकट हर जान सो दास दर्ग परवान अपन दास कहो आप कृपा कर दास कहो सब सो जी पर सकल संगात मोदास जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा तुम्हें जीवन मुक्त सो कहावे।

कोट वैदुर्थवासी की कोट बन ब्रह्मदास की कोट वेद के स्रोत की कोट तपि स्रोत के कोट आत्म ध्यान तारह के कोट कविका विचार के गुण अवतन नाम ते अवनान कर दि कंदन पाव कई कोट पय मन कई कोटांध ज्ञान कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिघातम कोर कई कोट पर दर्भ काव रह कई कोट पर दुहना कर कई कोट माया श्रम वाह कई कोट प्रदेह प्रमाह जित जित लाव तेत तेत लगना नानक करते की जाना करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राज रह भोगी कई कोट पंखी सर्व्या पाई कई कोट पाथर बिरख ने पचाई कई कोट पावन पाण व्यास अंतर कई कोट देह कुमल कई कोट शशि अर सूर नक्षत्र कई कोट देव दान इंद्र सिर शतर सगर समाग्री अपना सूर तारा जे नानक जिस जिह पावे तेस तेह नहतार कई कोट राजस्ताम साधक कई कोट वेद प्रायण सिमरतर सासत कई कोट की रतन संबद्ध कई कुंडन प्रकार जन कई कोट की चिरजीवे कई कोट गिरी मेर स्वरण धीवे कई कोट जाख किन्नर पिशाच कई कोट भूत प्रिय सुक्रमर का सब तिन निरा सब हुते तू नानका अलिप त्रहिया पार पूर कई कोट पाताल के वास कई कोट नरक स्वर्ग निवास कई कोट जन्म जीव हमर है कई कोट भजोनि फिर है कई कोट बैठ दि खाही कई कोट काल थक पाही कई कोट किए तन मंद कई कोट माया मह चिंत जह जह पाणा दह दह रख नान सब किस प्राव के हाथ कई कोट पय बरा कई कोट पय वैरागी राम नाम सांग तेन देवरागी कई कोट प्राभु को हो जान दिया तम मह पार ब्रह्म रहंति कई कोट दर्शन प्राप्य आस्तिन को मेरे प्रभु अवनाश कई कोट मांग सत संग पार ब्रह्म दंडा करंग जिन को होया सो प्रसन्न अनंत ते जन सदा तन तन कई कोट खाण अरखंड कई कोट अकस ब्रह्मांड कई कोट होय अवतार कई जुगत किन विस्तार कई बार पसरे उपासार सदा सदा एक एकंकार कई कोट किन भपात प्रवति हुई ब्रह्म समाद तक अंत न जान को अपना प्राप्त सो कई कोट पार ब्रह्म के दास दिन हो आत्म प्रकाश कई कोट दात के बीत सदा निहार है कुनेत्र कई कोट नाम राह पीव हमर पय साध साध जीव कई कोट नाम कुन गाव्याज सुमावन जान को सामारे नानक परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रवीक है दूसर नाही कोय नानक देह बल हारण जाल थल मही अल सोयाष्टपति करण करावन करना जोग जो दह पावे सोई होग खिन मह था पो था पुनरांत नहीं किस पार वार हुक्मे तारु तारु दहावे हुक्मे बजा हुक्म समावे हुक्मे उजनी च व्याव हर हुक्मे न करंग प्रकार कर कर दिखा अपनी उड़िया न अनुसार में रहे और समाई प्रभु पावे मानुख गात पाव प्रभ पावे न पाथर द्राव प्रभ पावे विंसास रख प्रभ पावे न हर गुण पाख प्रभ पावे न पत देव हर आप कर अपन विचार दोह श्रेय का स्वामी खेल विकसांत्र जम जो पावे सुकार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कहूँ मानुख ती क्या हुए जो पावे सुई करावे उसका हाथ हुए तो सब की शैली जो देख पावे सुई करी अन जान तो बिखिया महाराज जी जान तो अपना बचाए पर में पुला दह दस तावे निमुख मह चार गुण भरावे कर कृपा जिस अपने भगत दी नानक जी जाना मेले खनवा नीच कीट करा जो पार ब्रह्म गिरी मनवा जाकर दृष्ट कशु नया दिस तत्काल दह दह प्रगटा जा कहो अपने करा बख्शी सा कली खाना करा जगदीश जियो पिंड सब दस विरास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगा अपने बण तब नायु नानक जी वाय देख बड़ा इसका बाल नाहि सहस करम क्रम सर्व नाथ थक कर बपरा जियो जो दह पावे सोई फुन थियो कबहु ऊच नीच मह बसा कबहु सोग हरख रंग हसा कबहु नींद चेंद व्याव हार कबहु ऊब आकाश पायाल कबहु वेद ब्रह्मचार नानक आ मिलावन हार कबहु निरुप कर बापात कबहु सोय रह गमरात कबहु महाक्रोध विकरार कबहु सर्व की दरबार कबहु होय बह बड़ राजा कबहु बिखर नीच कर साजा कबहु अब कीर्त में हावे कबहु पला पला कहवे जम प्राव राखत विहि रह गुरु प्रसाद अनुसार चुक है कबहू हुए पंडित करे बख्यान कबहू ताजरावत्यान कबहू ताट तीर से स्नान कबहू सिद्ध साधक मुह ज्ञान कबहू कीड़ पतंग हुए ज्ञान जन परमा परम ज्ञान नन रूप जसवागि दिखावे ज्यों प्रभ पावे तुवन चावे जो दुख पावे सोई हुए नान दूजा बना कोई कबहू सा संगति हो पावे सस्थान ते बाहर न आवे अंतर हुए ज्ञान प्रकाश हो सस्थान कन्ह विनाश मन तन नाम रति करंग सदा बस पार ब्रह्म का संग ज्यों जाल मह जलाई खटाना त्यों ज्योति संग जो समान मेट गए गवन पाए विश्राम नान प्रभु कह साधु प्रभा श्लोक सुखी बसा मस्किन आवन वार तली बड़े बड़े अहंकारिया

मन को गर्व करे अस्पति जिसका अंतर राज अपमान सो नर्क पाति स्वान जो जान है मैं जो उन्मंत सोहबत विष्टा का जन दास का कर्म मंत कहावे जन्म मरा वह जो परमाव धन भूमिका जो कर गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जस कह हृदय गरीबी बसावे नान की हा मुक्ता का सुख पावे तनवंता हुई कर कर पावे तृण समान का सत्संग न जाए वह रस कर मान ऊपर कर आस पर पितरता को बिना सब त्याव जाना बलवंत फिर मैं हो जाए समान्त कैसा न बाधा अहंकारी धर्म रहित करे कुरी गुरु प्रसाद जा कम मिटे अब मान सो जाना दरगह प्रवान कूट कर्म कर हाओ तारी श्रम पावे सकल व्यर्थारी अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वरूप फिर अवतार अनक जतन कर आत्मन द्रवै हर दर्ग है कहो कैसी गवे आप उसको जो भला कहवे तो सब भलाई निकट न सर्व की जा कमान हो कहो नानक ताकि निर्मल सो जब लग जाना मुझ ते काश हुए तब उसका सुख ना ही कोई जा भी है जाना मैं किस करता तब लाग करो जो मैं फिरता जब तार को बैरी मीत तब लाग नीह चलना चीत जब लाग मूह मगन संगवाय तब लाग धर्म राय दे सजाए प्रभु कृपा दे बंधन टूटे गुरु बसा नान खाओ छूटे सहस खटी लाख का उठतावे त्रिवत न आवे माया पाशा पवन कोक बिखिया की कर न त्रिवतावे खाब खा मरा बिना संतोख नहीं कोक राजा सुपन मनोरथ प्रति सब काज नाम रंग सर्व सुख बुढ़ भागी कस प्रवत कन क्रवन आप सदा सदा नान खर जाप कन क्रवन करने हार इसका हाथ कहा विचार जैसे दृढ़ करे तैसा हो आप प्रभ सो जो किसी नो सब न रंग सब दे दूर सब हु का संग भूख जाय देखा कर बबी का बहे का बहन एक मर न बन साव न जय नान साध ही रहे असमय आप अबदी सह समझ आप रचा सबके साथ आप किनो अपन विस्तार सब का शोष कहो करने आरो ते बिन कहो कि सोए थान थान तरीका सोए अपने चल तू आप करने आर कहो तो करे रंगे अपार मन में है मन अपनी महनान क्यों कहना जाए साथ साथ साथ ब्रह्म स्वामी गुरु प्रसाद कहना वो किया ने सच सच सच सब किना गुण वद ही कहना बिरला जीना पला पला पला तेरा रूप है सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाण कट कट सुन सरवन बकियाणी

आठ पहर उपरा बसे हजूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे दिन की ओर टहली ही मन तन अपना दिन जान दी ही जिन जाने अपना प्रभु पुछा दस हो जान सर्व धोखा दाता तुसकी शरण सर्व सुख पावे तुसका दर्श सपा मिटावे और स्यों सगरी छाड़ तिस जन की तुम सेवा लाग आवन।

सुख होया रह पाव लागू जिन जाख्या से जान त्रिवतान पूर्ण पुरख नहीं डुलाने सुबर परि प्रेम रस रंग उपजाय जाओ साध कह संग परि सरना सब त्याओ अंतर पर अंतर प्रकाश खन दिन लिवला गुड़ भाग जपया प्राप्त सुख नानक नाम रति सुख होय सेवक मनसा पूरी पई।

मंजूरी। जिसका साथ इन दिया मिलाय न भक्ति न समाय सुख बेसराय जी काल न पन सुख बेसराय जी किया जा न सुख बेसराय जन साहब किस दिया सुख बेसराय जी जीवन जिया सो क्यों बिसरा जी अगन महाराख है गुरु प्रसाद गोबेला राख है सुख बिसरा जी विख दिकाट है जन्म जन्म का टूटा घाट है गुरु पूरा है ताते है बुझाया प्रभु अपना नानक जानते आया साजन संत कर हुए होका मान त्याग जप हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाव भाव जप अवरह नाम जपाव भगत पाई तर संसार बिन भगति तन हो सी शैर सर्व कल्याण सुख नेद नाम बुढ़ जात पाई विस्तान सकल दुख अवदना स्नानक नाम जप हुंता सुख जी प्रीत प्रेम रह चवान तना त्रिह स्वाव नेत्र बेख दर सुख मान बिग सह साधु चरण धोय भगत जनक मंत्र रंग बिरला को पावा संगिक बस दी जगर मया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहे सर्व समाय प्रभु संत दयाल।

जोग जह पावत था पन्नाई लावे जह पावत कील खिलाव भी समार या था गणत या तोलै ज्यों बलाव त्यों नानक दाह बोलै श्लोक जी जंत के ठाकुरा आप वर्तनार नानक को पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथ आप सुनने हार आप ही का विस्तार जात पावत श्रेष्ठ उपाय आपना पाण लय समय तुम दिपिन किश आप सूत सब जगत पुरोहित जा कौ प्रभु जी आप बुझाय सजन सो जन पाय सो समदर्शी तद कवि तनानु सब श्रेष्ठ का जीता जी अजंत्र सवता कहा दीन दयाल अनाथ पुनः जस रखत हुए न मार सो मुआ जिस मन हूँ बसारा देहता जु अवर कह कुजाय सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाक सब हाथ अंतर बह जान साथ

हैं, अभीत हैं, त्रिमाण हैं, निदान हैं, त्रिपर्ग हैं, असर्ग हैं, अनील हैं, अनाद हैं, अजय हैं, आजाद हैं, अजन्म हैं, अवर्ण हैं, अभूत हैं, अपर्ण हैं, अगंज हैं, अपंज हैं, अचूज हैं, अचंज हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, नृपूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अलाह हैं, अजाह हैं, अनंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, नृश्रीक हैं, नृलंब हैं, असंभ हैं, अगम हैं, अजम हैं, अभूत हैं, अछूत हैं, अलोक हैं, अशोक हैं, अक्रम हैं, अभ्रम हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, अबाह हैं, अगाह हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं, उजंग प्रयात छंद, नमो सर्वमाने समस्ती निधाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्वपाले, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वभौणे, अनंगी अनाथे नृसंगी प्रमाथे, नमो भाण भाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो भाण भाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पाण पाने, नमो वाद वादे, अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रपंगी प्रमाथे, समस्ती विभूते कलंकंग बिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणे, नमो अस्त्रमाणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता अपेखी अपरमी अभोगी अभुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहंग, नमो भूप भूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग स्नानंग, नमो मंत्र मंत्रंग, नमो जंत्र जंत्रंग, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रंग, सदा सचिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता, अधो उर्द अर्दं अघं ओघ हर्ता, परम परम परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं, अशेदी अभेदी अनामंग अकामंग, समस्तो पराजी समस्तस्त तामंग, तेरा जोर चाचरी छंद, जले हैं थले हैं, अपीत हैं अपे हैं, प्रभु हैं अजू हैं, आदेश हैं अपेस हैं, भुजंग प्रयात छंद, अगाधे अबाधे अनंगी स्वरूपे, नमो सर्वमाने समस्ती निधाने, नमस्त्वंग नृनाथे, नमस्त्वंग प्रमाथे, नमस्त्वंग गंजे, नमस्त्वंग पंजे, नमस्त्वंग काले, नमस्त्वंग पाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो शोक शोखे, नमो सर्वरोगे, नमो सर्वभोगे, नमो सर्वजीतंग, नमो सर्वपीतंग, नमो सर्वज्ञानंग, नमो परमतानंग, नमो सर्वमंत्रंग, नमो सर्वजंत्रंग, नमो सर्वदृसंग, नमो सर्वकृसंग, नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवंग, नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे, समस्तंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे, कुकर्मंग प्रणासी, सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धंग निवासी, चरपट छंद त्वा प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मंग अलख कर्मंग, सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग भाने सर्वंग माने, सर्वं प्राणंग सर्वंग त्राणंग, सर्वं भुक्ता सर्वंग जुगता, सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग, सर्वंग काले सर्वंग पाले, रूआल छंद त्वा प्रसाद, अरूप आदरूप अनाद मूरत अजोण पुरख अपार, सर्वमान त्रिमान देव अभेव आद उदार, सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल, जत्र तत्र विराज ही अवतू।

ਜਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸਾ ਵਿਸਾ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ, ਨਾਮ ਕਾਮ ਬਿਹੀਨ ਪੇਖਤ ਧਾਮ ਹੂੰ ਨਹਿ ਜਾਹੈ, ਸਰਬਮਾਨ ਸਰਬਤਰਮਾਨ ਸਦੈਵ ਮਾਨਤ ਤਾਹੈ। ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸਨ ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ, ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਣ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ, ਦੇਵ ਭੇਵ ਨਾ ਜਾਣਹੀ ਜਹ ਵੇਦ ਔਰ ਕਤੇਬ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੋ ਜਾਨੈ ਕਹਿ ਜੇਬ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾ ਕਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਹੀਨ, ਚੱਕਰ ਬੱਕਰ ਫਿਰੈ ਚਤਰ ਚੱਕ ਮਾਨ ਹੀ ਪੁਰਤੀਨ, ਲੋਕ ਚੋ ਦਹਿ ਕੇ ਬਿਖੈ ਜਗ ਜਾ ਪਈ ਜਹ ਜਾਪ, ਆਦ ਦੇਵ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ ਥਾਪਿਓ ਸਭੈ ਜਹ ਥਾਪ, ਪਰਮ ਰੂਪ ਪੁਨੀਤ ਮੂਰਤ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ, ਸਰਬ ਵਿਸਵ ਰਚਿਓ ਸਿਯਮ ਭਵ ਗਣ ਭੰਜਨ ਹਾਰ, ਕਾਲਹੀਨ ਕਲਾ ਸੰਯੁਗਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਦੇਸ, ਧਰਮ ਤਾਮਸ ਭਰਮ ਰਹਤ ਅਭੂਤ ਅਲਖ ਅਭੇਸ, ਅੰਗ ਰਾਗ ਨਾ ਰੰਗ ਜਾ ਕਹਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਨਾਮ, ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਦੁਸ਼ਟ ਭੰਜਨ ਮੁਕਤ ਦਾਇਕ ਕਾਮ, ਆਪ ਰੂਪ ਅਮੀਕ ਅਨ ਉਸਤਤ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਵਧੂਤ, ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਸਰਭ ਭੰਜਨ ਆਦ ਰੂਪ ਅਸੂਤ, ਅੰਗਹੀਨ ਅਭੰਗ ਨਾਤਮ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ, ਸਰਬ ਲਾਇਕ ਸਰਬ ਕਾਇਕ ਸਰਬ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰ, ਸਰਬ ਗਣਤਾ ਸਰਬ ਹਣਤਾ ਸਰਬ ਤੇ ਅਣਭੇਖ, ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਨਾ ਜਾਣਹੀ ਜਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ, ਪਰਮ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾ ਕਹਿ ਨੇਤ ਭਾਖਤ ਨਿਤ, ਕੋਟ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਨਾ ਆਵਹੀ ਵਹਿ ਚਿਤ, ਮਦ ਪਾਰਸ਼ੰਦ ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਣ ਗਣ ਉਦਾਰ ਮਹਿਮਾ ਪਾਰ, ਅਸਨ ਅਭੰਗ ਉਪਮਾ ਨੰਗ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਸਦਿਨਿਆ ਨਾਸ, ਆ ਜਾਣ ਬਾਹੋ ਸਾਹਾਣ ਸਾਹੋ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜਪਾਨਾਣ ਭਾਣ, ਦੇਵਾਣ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ, ਇੰਦਰਾਣ ਇੰਦਰ ਬਾਲਾਣ ਬਾਲ, ਰੰਕਾਣ ਰੰਕ ਕਾਲਾਣ ਕਾਲ, ਅਣਭੂਤ ਅੰਗ ਆਪਾ ਭੰਗ ਗਤਮਿਤ ਅਪਾਰ, ਗੁਣਗਣ ਉਦਾਰ ਮੁਣਗਣ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਨਿਰਭੈਨ ਕਾਮ ਅਤ ਦੁੱਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਮਿਤ ਗਤ ਅਖੰਡ, ਆਲਿਸਯ ਕਰਮ ਆਦ੍ਰਿਸਯ ਧਰਮ ਸਰਬਾ ਪਰਨਾਡੈ, ਅੰਡੰਡ ਬਾਡੈ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ, ਹਰਿਯੰ ਕਰਿਯੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਅਕਾਮੇ ਭਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ, ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਕਰਤਾ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਹਰਤਾ, ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਜਾਨੇ, ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਭਰਤੀ, ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਪਾਲੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਕਾਲੇ, ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਪਾਸੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਵਾਸੇ, ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਮਾਨਿਆ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨਿਆ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ, ਨਾ ਸਤ੍ਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ ਨਾ ਭਰਮੰਗ ਨਾ ਪਿੱਤਰੈ ਨਾ ਕਰਮੰਗ ਨਾ ਕਾਏ, ਅਜਨਮੰਗ ਅਜਾਏ, ਨਾ ਚਿੱਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ ਭਰੇ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰੈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਸੈ ਆਦਿਸੈ ਆਦ੍ਰਿਸੈ ਅਕ੍ਰਿਸੈ, ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਥਤੇ, ਕਿਆ ਛਿਜ ਦੇਸੈ ਕਿਆ ਭਿਜ ਭੇਸੈ, ਕਿਆ ਗੰਜ ਕਰਮੈ ਕਿਆ ਭੰਜ ਭਰਮੈ, ਕਿਆ ਭਿਜ ਲੋਕੈ ਕਿਆ ਦਿੱਤ ਸੋਕੈ, ਕਿਆ ਵਧੂਤ ਭਰਨੈ ਕਿਆ ਵਿਭੂਤ ਕਰਨੈ, ਕਿਆ ਰਾਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਕਿਆ ਧਰਮੰਗ ਤੁਜਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਸੋਕ ਵਰਣੈ ਕਿ ਸਰਬਾ ਅਭਰਣੈ, ਕਿ ਜਗਤੰਗ ਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਤਰੰਗ ਛਤਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰਗ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਭਵ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਕਿ ਆਦ ਅਦੇਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਅਭੇਵ ਹੈ, ਕਿ ਚਿਤਰੰਗ ਵਿਹੀਨ ਹੈ ਕਿ ਏਕੈ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜੀ ਰਜਾਕੈ ਰਹੀਮੈ ਰਿਹਾਕੈ, ਕਿ ਪਾਕ ਬੇਐਬ ਹੈ ਕਿ ਗੈਬੁਲ ਗੈਬ ਹੈ, ਕਿ ਅਫੁਲ ਗੁਣਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਾਣ ਸਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਰਣ ਕੁਣਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਦੇਹੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮੰਗ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬੰਗ ਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰਗ ਦਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨਿਆ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦਾਨਿਆ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਗਾਉਣੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭਾਉਣੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਸਾਜੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੀਨੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਲੀਨੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਜਾਹੋ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭਾਹੋ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਕਾਲੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪਾਲੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਹੰਤਾ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਗੰਤਾ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਕਾਜੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਸੋਖੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪੋਖੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਤ੍ਰਾਣੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪ੍ਰਾਣੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨਿਆ ਸਦੈਵ ਅੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨਿਆ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਜਾਪਿਆ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਥਾਪਿਆ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭਾਨੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਇੰਦ੍ਰੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਚੰਦ੍ਰੈ, ਕਿ ਸਰਬੰਗ ਕਲੀਮੈ, ਕਿ ਪਰਮੰਗ ਫਹੀਮੈ, ਕਿ ਆਕਲ ਅਲਾਮੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੈ, ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਵਜੂ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਉਲ ਰਜੂ ਹੈ, ਹਮੇਸਲ ਸਲਾਮੈ, ਸਲੀਖਤ ਮੁਦਾਮੈ, ਗਨੀ ਮੁਲ ਸਿਕਸਤੈ, ਗਰੀਬ ਉਲ ਪਰਸਤੈ, ਬਿਲੰਦੁਲ ਮਕਾਨੈ, ਜਮੀਨ ਉਲ ਜਮਾਨੈ, ਤਮੀਜ ਉਲ ਤਮਾਮੈ, ਰਜੂਅਲ ਨਿਧਾਨੈ, ਹਰੀਫ ਉਲ ਅਜੀਮੈ, ਰਜਾਇਕ ਯਕੀਨੈ, ਅਨੇਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈ, ਅਭੇਦ ਹੈ, ਅਭੰਗ ਹੈ, ਅਜੀਜ ਉਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ, ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਵਿਭੂਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਸੁਯੁਕਤ ਸੁਧਾ ਹੈ, ਸਦੈਵੰਗ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਜ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਦੈਵਲ ਅਕਾਮ ਹੈ,
निर्बाध स्वरूप हैं, अगाध हैं, अनूप हैं, ओं आद रूपे अनाद स्वरूप है, अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिपरगंग त्रिवादे अगंजे अगादे सुभंग सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिभुक्त स्वरूप हैं, अशिज हैं, अशूत हैं, के नरकंग प्रणास हैं, पृथ्वल प्रवास हैं, निरुक्त प्रभा हैं, सदैवं सदा हैं, विभुक्त स्वरूप हैं, प्रयुक्त अनूप हैं, निरुक्त सदा हैं, विभुक्त प्रभा हैं, अनुक्त स्वरूप हैं, प्रयुक्त अनूप हैं, चाचरी छंद अभंग हैं, अनंग हैं, अपेख हैं, अलेख हैं, अपरम हैं, अकर्म हैं, अनाद हैं, जुगाद हैं, अजय हैं, अवय हैं, अभूत हैं, अतूत हैं, अनास हैं, उदास हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, अभक्त हैं, विरक्त हैं, अनास हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलिख हैं, अदिख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटाह हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगंभ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट छंद त्वप्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जूता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्वा प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभंगी स्वरूपे स्रभंगी अनूपे न पुत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते नृसाकं श्रीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती छंद त्वा प्रसाद कै जाहर जहूर हैं कै हाजर हजूर हैं हमेशल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चिराग हैं के कामल करीम हैं के राजक रहीम हैं के रोजी देहंद हैं के राजक रहिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुसनल जमाल हैं गनीमुल खिराज हैं गरीबुल निवाज हैं हरीफुल सिकन हैं हिरासल फिकन हैं कलंकंग प्रणास हैं समस्तुल निवास हैं गंजल गनीम हैं अरजायक रहीम हैं समस्तुल जुबा हैं के साहिब के राह हैं के नरकंग प्रणास हैं वे हस्तुल निवास हैं के सरबुल गवन हैं हमेशल रवन हैं तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परम परम ईस हैं समस्तुल अदीस हैं आदेशुल अलेख हैं हमेशल अपेख हैं अमी जमीनुल जमा हैं अमीकुल इमा हैं करीमुल कमाल हैं के जुर अजमाल हैं के अचलंग प्रकाश हैं के अमितो सुभाष हैं के अजब स्वरूप हैं के अमितो विभूत हैं के अमितो पसा हैं के आत्म प्रभा हैं के अचलंग अनंग हैं के अमितो अभंग हैं मधुपार छंद त्वा प्रसाद मुणमन प्रणाम गुणगण मदाम हर बर गंज हर नर प्रभंज अणगण प्रणाम मुणमन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुणमन प्रकाश गुणगण प्रणाम जल थल मुदाम अणशिज अंग आसन अभंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अणभव अनास त्रित धर तुरास आ जान बाहो एक ऐ सदाहो ओंकाराद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अणशिज गात आजना बात अणझंज गात अनरंज बात अण टुट भंडार अण ठट अपार अडीठ धर्म अत ढीठ कर्म अण ब्रण अनंत दाता महंत हरि बोल मना छंद त्वा प्रसाद करुणालय हैं अरकालय हैं खल खंडन हैं महमंडन हैं जगतेश्वर हैं परमेश्वर हैं काल कारण हैं सर्ववारण हैं त्रित के धारण हैं जग के कारण हैं मन मान्य हैं जग जान्य हैं सर्वं पर हैं सर्वं कर हैं सर्वपास्य हैं सर्वनास्य हैं करुणाकर हैं विश्वंबर हैं सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंडस हैं खल खंडस हैं परते पर हैं करुणाकर हैं अजप अजप हैं अथपा थप हैं अकृताकृत हैं अमृतामृत हैं अमृतामृत हैं करुणाकृत हैं अकृताकृत हैं तरणीकृत हैं अमितेश्वर हैं परमेश्वर हैं अकृताकृत हैं अमृतामृत हैं अजबाकृत हैं अमृतामृत हैं नरनायक हैं खलकायक हैं विश्वंबर हैं करुणालय हैं नृपनायक हैं सर्वपायक हैं पवभंजन हैं अर्गंजन हैं रिवतापण हैं जाप जापण हैं आकलंकृत हैं सर्वाकृत हैं कर्ताकर हैं हर्ता हर हैं परमात्म हैं सर्वात्म हैं आत्मवास हैं जासके जास हैं भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो वृंद वृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग तामसंग शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार लंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अभंगी स्रूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक श्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज अभंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भजंग प्रयात छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल नामे समस्तल निवासे नृकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कनिंदा समस्तल निवासी अजायब विभूते गजायब गणीमे हरियंग करियंग करीमल रहीमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वयुगते

परम सत्कार योग गुरु की साजी निवाजी सात संगत जीओ। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी ने कृपा की है, अमृत वेले का समा अमृत वर्गी मिठी बाणी का जाप और महाराज जी ने अपने चरणों में बैठन का समा बख्शिश करता। अति चंगे भागां की निशानी है गुरु प्यारियो। अज दे हुक्मनामे की बख्शिश हुई है। सोरठ राग दे विच गुरु अर्जन देव महाराज जी की पावन पवित्र रसना तो यह शब्द उचारण हुआ। गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी की रसना पाठ साहिबान कहते हैं गुर अर्जन प्रतख हर के गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज परमात्मा ही हैं, प्रतख हैं। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी की रसना तो भाव की है, ये जेडे बोल हैं ये रब की रसना तो आ रहे हैं। जिहड़ा इन्हां बोलां नूं पढ़ेगा, बाणी नूं पढ़ेगा, रब दे बोलां नूं पढ़न वाला हिरदा रब नाल ही जुड़ जाएगा। परमात्मा दे परमात्मा दी रसना तो निकले हुए बोलां नूं सुनने वाला हिरदा उस मालक दे विच ही लीन हो जाएगा। ते पातशाह की फरमान करदे हां।

की दात बख्शिश करने गए। ते साधु ने आख्या, मैं गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी के दर्शन करने चाहुंदा। संगतां ने आख्या, जिहदे दर्शन करने चाहुंदा है ओह सामने खड़े ने। आखो सतनाम, सामने खड़े ने। जदों गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी के दर्शन किए, महाराज जी ने चरणों के विच नमस्कार की उस जोगी ने, तो उत्थे अज गुरद्वारा संतोख सार साहिब बनिया होया है। साथ संगत, यह है आनंद मंगल सुख पाए। पातशाह कहिंदे ने अपने अंदर आ जा, कर इशनान ग्रह आए, आनंद मंगल सुख पाए। जदों तू अपने हिरदे रूपी घर दे विच आ जाएगा, ते जेड़े अपने हिरदे रूपी घर दे विच आ जाते ने, गुरु उन्हां नूं मुक्ति का मार्ग, मुक्ति की दात बख्शिश कर दे। संतो राम नाम निस्तरिए, उठत बैठत हर हर ध्याइए, अनदिन सुकृत करिए। हुण अपने अंदर नूं आउणा किवें है? पातशाह कहिंदे ने उस परमात्मा का नाम जप के। संतो, हे संत जनो, रब दे प्यारिओ, परमात्मा का नाम जपया करो। निस्तरिए का अर्थ है पार होना। ये संसार रूपी भौजल तो पार होना चाहते हो, मुक्ति का मार्ग प्राप्त करना चाहते हो, मालक का नाम जपया करो। किमें? उठत बैठत हर हर ध्याई है, अन दिन सुकृत कर। सुकृत का अर्थ है सच्ची किरत, नेक कर्म करने। उठद्या बहद्या हर रोज़ उस मालक नूं याद करिया करो, ते नेक कमाई करो। रहाओ संत का मार्ग, धर्म की पौड़ी।

संत का मार्ग, सिमरन दा मार्ग, निम्रता दा मार्ग, त्याग दा मार्ग। संत शब्द दा अर्थ है सस्सा सिमरन, टिप्पी नन्ने दी आवाज दिंदी नन्ना निम्रता, ते तत्ता त्याग। जिस हिरदे विच सिमरन आ गया, जिस हिरदे विच निम्रता आ गई, ते जिस हिरदे विच त्याग आ गया, ये मार्ग ते संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडभागी पाए। कोई विरला हिरदा ही है, असल विच यही धर्म की पौड़ी है। कोई वड्डिया भागा वाले इस पौड़ी ते चढ़ते हैं, इस मार्ग ते चलते हैं। कोट जन्म के किल विखनासे, हर चरणी चित लाए। पातशाह कहिंदे ने करोड़ां जन्मां दे कीते हुए जिहड़े पाप ने ना, वो नाश हो जाते हैं जदों चित गुरु दे चरणां नाल जुड़ जाए।

भाई प्रेमरदार ज्ञानी नतीवा जिवावे रू करे श्रृंगार उचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर पंडित हिकमत जी संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गुवा।